खो दिया, जबकि दूसरे बेटे ने पॉजिटिव राह अपनाकर मेहनत की, पढ़ाई की और एक बड़े अधिकारी का पद हासिल कर धन कमाया और इज्जत कमाई। बड़ा बेटा कहता है, मेरी यह हालत मेरे पिता की वजह से हुई है। मैंने उन्हें हमेशा नशे में देखा और वही आदतें मैंने अपना ली। छोटा बेटा कहता है, मैं भी अपने पिता की वजह से आज जहां हूं वहां हूं। मैंने उनके जीवन से यह सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मैंने उनके गलत रास्ते को देखकर सही रास्ता चुनने का फैसला किया। मैंने मेहनत और शिक्षा को अपना साथी बनाया। यह किस्सा हमें बताता है कि हमारा नजरिया ही हमारी सफलता और असफलता का आधार बनता है। हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कठिन समय से गुजरना पड़ता है। हमारे विचार ही हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से एनर्जी और उत्साह बढ़ता है। अपनी गलतियों को कमजोरी नहीं बल्कि सुधार का अवसर माने। पॉजिटिव और हार्ड वर्किंग लोगों की संगत में रहेंगे तो हमारे ऊपर भी पॉजिटिव असर पड़ता है। पुराने दुखों और असफलताओं को बार बार याद करने से वर्तमान प्रभावित होता है। जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत करने के लिए आती है। चलिए अब यह गीत सुनते हैं फिल्म अरमान से।

0: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: आप सब जानते ही होंगे कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, जिसमें कई दिग्गजों को और कई नए कलाकारों को सम्मानित किया गया था। बेस्ट फीचर फिल्म के तौर पर आर्टिकल 370 फिल्म को अवार्ड मिला और उसी फिल्म में दमदार अभिनय के लिए यामी गौतम को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दो कलाकारों ने जीता, कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए और मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मम्मूटी को ब्रह्मयुगम के लिए। ये सभी फिल्में नेटफ्लिक्स या प्राइम में मौजूद हैं, आप भी समय मिले तो उन्हें जरूर देखिए। भक्षक नामक फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड जीता संजय मिश्रा ने। बेस्ट एंटरटेनिंग फिल्म बनी कल्की 2898 AD। कैप्टन मिलर नामक फिल्म को बेस्ट फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज के लिए अवार्ड दिया गया। आर्टिकल 370 के संगीत के लिए शाश्वत सचदेव को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड मिला। मैदान फिल्म के गीतों के लिए मनोज मुंतशिर को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला।

फिल्मों की प्लेबैक सिंगर वैक्यम विजयलक्ष्मी को बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड मिला फिल्म एआरएम के लिए और घरत गणपति फिल्म के लिए बेस्ट मेल सिंगर का अवार्ड मिला अभय जोधपुरकर को। वैक्यम विजयलक्ष्मी जन्म से अंधी हैं, परंतु अपने अंधेपन के सभी चैलेंजेस को उन्होंने पूरी बहादुरी से झेला है। वे एक प्रकार का रेयर इंस्ट्रूमेंट गायत्री वीणा बजाती हैं और 2 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने गीत गाने शुरू किए थे। शास्त्रीय संगीत ने उन्हें अपनी तरफ खींचा बाद में। चलिए अब उन्हीं का गाया एआरएम फिल्म का यह मलयालम गीत सुनते हैं जिसके लिए उन्हें अवार्ड मिला।

चलिए अब बातें करते हैं कुछ ऐसे ही अन्य कलाकारों के बारे में जिन्होंने पिछले कुछ सालों में नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। बॉलीवुड के महानायक के रूप में जाने जाने वाले हमारे बिग बी अमिताभ बच्चन ने 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर जीता है। 1990 में अग्निपथ के लिए, फिर 2005 में ब्लैक के लिए, फिर 2009 में पा के लिए और 2015 में पीकू के लिए। अग्निपथ में एक खूंखार क्राइम लॉर्ड के खिलाफ एक व्यक्ति के मुहिम को दिखाया गया था। ब्लैक फिल्म में एक डेफ ब्लाइंड गूंगी बहरी लड़की और उसके टीचर की कहानी थी। पा में एक ऐसे बच्चे की कहानी थी जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर का शिकार होता है जिससे वह अपनी उम्र से कई गुना बड़ा हो जाता है और जल्द ही जीवन खत्म हो जाता है। इस फिल्म में एक बेटे और पिता के अनमोल रिश्ते को दर्शाया गया है। इस फिल्म की खासियत यह थी कि इसमें रियल लाइफ के बाप बेटे यानी अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन फिल्म में बेटे और बाप का रोल करते नजर आते हैं, यानी कि अमिताभ फिल्म में अभिषेक के बेटे बने हैं जो समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और एक जेनेटिक कंडीशन की वजह से। सुनने में ऑकवर्ड लगता है परंतु फिल्म देखने पर यह स्वाभाविक लगता है। पीकू फिल्म में एक इंडिपेंडेंट बेटी और एक बुजुर्ग पिता के रोड ट्रिप के दौरान चलती उनकी जिंदगी की कहानी है। इसमें बाप बेटे के रोल में अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण हैं। चलिए अब सुनते हैं पा फिल्म का यह फेमस गीत।

0: Hi, I'm Adrian Schrinner, Lord Mayor of Brisbane. We're delivering Operation Smooth to make some of Brisbane's busiest roads safer and smoother. The record $110 million resurfacing program will renew almost 1 million square metres of road across the city. Operation Smooth follows our Big Fill pothole blitz, which repaired one pothole every 2 minutes at peak. We're investing in better roads to help get you home sooner and safer.
1: आप सुन रहे हैं 4EB FM 98.1 का साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। तो हम बातें कर रहे थे नेशनल फिल्म अवार्ड्स के विषय में। बिग बी की तरह ही कंगना रनौत ने भी 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते हैं। 2008 में फैशन के लिए, 2014 में क्वीन के लिए, 2015 में तनु वेड्स मनु रिटर्न्स के लिए और 2019 में मणिकर्णिका और पंगा के लिए। 2008 में फैशन फिल्म के लिए प्रियंका चोपड़ा को बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। फैशन फिल्म में मॉडलिंग इंडस्ट्री के ग्लैमर के साथ साथ उसके काले हिस्से को दिखाया गया था। क्वीन फिल्म में एक सीधी साधी लड़की की शादी टूट जाने के बाद वह किस तरह अपने आप की खोज करती है यह दिखाया गया है। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स एक रोमांटिक कॉमेडी थी। मणिकर्णिका में रानी लक्ष्मीबाई की कहानी दिखाई गई थी। पंगा फिल्म में एक पुरानी कबड्डी चैंपियन की वापसी की कहानी है। 2011 में सिल्क स्मिता के जीवन पर आधारित कहानी बताई जाने वाली फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए विद्या बालन ने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड। 2022 में गंगूबाई काठियावाड़ी में दमदार अभिनय के लिए आलिया भट्ट को मिला था नेशनल अवार्ड। यह फिल्म एक ऐसी वैश्या की कहानी थी जो कि छल से वैश्यावृत्ति में ढकेली जाती है और वह फिर काफी शक्तिशाली ब्रॉथल ओनर बनकर सोशल रिफॉर्मर बनती है और वैश्याओं की आवाज बनती है। 2021 में सरोगसी पर बनी फिल्म मिमी के लिए कृति सेनन को नेशनल अवार्ड मिला था। चलिए अब डर्टी पिक्चर का यह प्यारा सा गीत सुनते हैं।

हमारी हिंदी फिल्मों में कई बार मेन एक्टर से भी बढ़कर होते हैं सपोर्टिंग एक्टर्स। ऐसे ऐसे दिग्गज अभिनेता हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कि उनकी एक्टिंग हमारा दिल छू लेती है और फिर वे अदाकार उन्हीं रोल्स के नाम से मशहूर हो जाते हैं। 1989 में राख नामक एक फिल्म आई थी जिसमें एक युवा अपनी प्रेमिका पर हुए आक्रमण के लिए न्याय की तलाश में निकलता है। इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल में पंकज कपूर ने काफी बढ़िया काम किया था और नेशनल अवार्ड पाया था। 1989 में परिंदा फिल्म के खलनायक के रूप में नाना पाटेकर आए थे। आग के बीच पागलों की तरह सर पर मारना और चिल्लाने वाला सीन आज भी याद किया जाता है। फिल्म में जान डालने के लिए सच्ची में अपने चारों तरफ आग जलाकर अभिनय किया था नाना पाटेकर ने, जिसमें उन्हें कुछ चोटें भी आई थी। 1994 के क्रांतिवीर नामक फिल्म में एक पुलिस अफसर की भूमिका में दिखे थे डैनी, जिन्होंने अपने दमदार अभिनय से नेशनल अवार्ड जीता। 1997 की विरासत नामक फिल्म में ग्राम पंचायत के मुखिया के रूप में अच्छा अभिनय करने के लिए ओमपुरी को नेशनल अवार्ड मिला था। 2000 में हे राम में कम्युनल वायलेंस के कारण जीवन की मुश्किलों में पड़े एक किरदार को निभाने के लिए अतुल कुलकर्णी को नेशनल अवार्ड मिला था। मुंबई के बार डांसिंग की दुनिया में पहुंची एक लड़की को प्यार करने और सहारा देने वाले एक युवा का किरदार अतुल कुलकर्णी को 2001 में फिल्म चांदनी बार के लिए नेशनल अवार्ड दिलाता है। 2008 में रॉक ऑन मूवी के लिए अर्जुन रामपाल सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड जीतते हैं। चलिए विरासत फिल्म का यह गीत सुनते हैं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: Station sponsor.
2: जिस तरह कई सपोर्टिंग एक्टर्स ने नेशनल अवार्ड्स जीते हैं, उसी तरह कई एक्ट्रेसेस भी हैं जिन्होंने कई फिल्मों में ऐसे रोल्स अदा किए हैं कि उन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 1984 की एक पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म पार्टी के लिए रोहिणी हट्टंगडी ने यह अवार्ड अपने नाम किया। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की क्लासिक नॉवल देवदास पर आधारित फिल्म में पारो की मां का दिल छूने वाला अभिनय कर किरण खेर ने यह अवार्ड अपने नाम किया। शेक्सपियर की ओथेलो नामक कृति से प्रेरित कहानी वाली ओमकारा में एक दमदार भूमिका करने वाली कुंकणा सेन, एक गांव में खत लिखने का काम करने वाली के रूप में 2008 में आई रूरल कॉमेडी वेलकम टू सज्जनपुर में अपने अभिनय के लिए दिव्या दत्ता, बधाई हो फिल्म की दादी सुरेखा सीकरी के अभिनय को कौन भुला सकता है, 2019 की फिल्म ताशकंद फाइल्स में पल्लवी जोशी का किरदार, इस फिल्म में लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी मौत को आधारित बनाया गया था, 2022 में कश्मीर फाइल्स में कश्मीर इंसर्जेंसी के दौरान कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी बताई गई थी, इसमें भी पल्लवी जोशी को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला था। उसी तरह कुछ ऐसी भी भूमिकाएं होती हैं जिन्होंने जूरी का स्पेशल अप्रिसिएशन मिलता है। उनमें आती है रुक्मवती की हवेली फिल्म के लिए पल्लवी जोशी, पा फिल्म के लिए अरुंधति नाग, हैदर के लिए तबू, 1980 की फिल्म अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, इसमें श्रीला मजूमदार जैसी मंझी हुई अभिनेत्रियां। चलिए अब सुनते हैं फिल्म देवदास का यह फेमस गीत।

एक्टर्स एक्ट्रेसेस की ही तरह सिंगर्स की भी लंबी लिस्ट है जिन्होंने नेशनल अवार्ड्स हासिल किए हैं। KS चित्रा, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर, उदित नारायण, मन्ना डे, अरिजीत सिंह, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। 1967 में मेरे देश की धरती वाला आइकॉनिक गीत गाया था महेंद्र कपूर ने। 1968 में झनक झनक तोरी बाजे पायलिया गीत गाया था मन्ना डे ने। 1969 में ए भाई जरा देख के चलो गीत भी मन्ना डे ने गाया था। 1976 में KJ यशुदास का गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा गीत आज भी लोग महफिलों में गाते हैं। 1975 में भूपिंदर सिंह का गाया दिल ढूंढता है गीत। 1989 में मैंने प्यार किया फिल्म का मेरे रंग में रंगने वाली गीत। 1996 में हरिहरन का गाया गीत बाहों के दरमियां। 2001 में लगान फिल्म का मितवा गीत उदित नारायण का गाया। 2003 में कल हो ना हो गीत सोनू निगम का गाया हुआ। 2020 का अरिजीत सिंह का गाया केसरिया गीत। 1971 में आशा जी का दम मरो दम गीत। 1979 में वाणी जयराम का मेरे तो गिरधर गोपाल गीत। 1982 में सलमा आगा का दिल के अरमा गीत। 2002 में देवदास फिल्म का बैरी पिया गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। 2015 में मोनाली ठाकुर का गाया मोह मोह के धागे। ये सब गीत इतने फेमस हैं और आइकॉनिक हैं और इन सब के प्लेबैक सिंगर्स ने नेशनल अवार्ड्स जीते। तो चलिए सुनते हैं SP बालासुब्रमण्यम का गाया यह गीत, आइकॉनिक गीत, मैंने प्यार किया फिल्म का।

0: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: Station sponsor.
2: Awards, acknowledgements, recognitions, appreciations, ये सभी किसी भी व्यक्ति के लिए हौसला बढ़ाने की चीजें हैं, जिसमें हमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी का किया काम, चाहे वह घर पर हो, परिवार में हो, दोस्तों के बीच हो, स्कूल में हो या काम पर हो, यदि आपको किसी का काम अच्छा लगता है, तो उसे रिकॉग्नाइज कर उसे अप्रिशिएट जरूर कीजिए। आपके कुछ शब्दों से यदि किसी का दिन या कुछ पल खिल उठे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। तो हमारी इस छोटी सी हिंदी रेडियो फैमिली के काम को भी सराहने या अपने कमेंट्स देने में बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत। आशा है आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ एक घंटे तक जुड़े रहने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज का यह प्रसारण समाप्त करने का समय हो चला है। केरल में यह महीना रामायण पारायण का महीना है। सभी को भगवान राम का प्यार और आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। तो अब मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगले महीने फिर मिलेंगे। अपना और परिवार का ख्याल रखिए। हंसिए हंसाइए खुश रहिए। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।